0: आपका रेडियो, आपके शहर में आवाज एफएम।
1: मैं राज राम जी बोलता हूँ भैया, अली भैया, मेरी एक फरमाइश है, अगर हो सके तो बजा देना मेरे लिए, तुम रूठ के मत जाना। फिल्म है फागुन, रफी और आशा भोसले की आवाज में। थैंक यू।

0: तू सूट पा के आ गया, तू की प्यो दे वलीमे ते चले।
1: अब्बा जी रिश्ता मांगना है, होगी नहीं खेलनी।
2: ओए मां सबके मां दा परोला।
0: ओए आडा वड्डा मुंह मेरा।
2: हां जी हां जी।
3: पहली बार एक चीज मांगी थी, वो भी आप लोग मुझे नहीं लेके दे सके।
0: ओए अच्छा ना,
4: बट इज अनलिमिटेड।
3: मैं अपने आप को गोली मारना नहीं
5: है। Yeah, now these are facts. Don't ask me why, don't ask me what. He's just a mother loving butt.
6: लो जी यार,

0: साउथैम्पटन एक खूबसूरत तारीखी शहर, समंदर की नीली लहरों के किनारे ये आबाद शहर अपने अंदर कितने राज छुपाए हुए हैं। मेरी जवानी का शहर जिसकी गोद में मैंने कितने सुनहरे दिन गुजारे हैं, मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। इसी शहर के दिल के अंदर हमारा एक कम्युनिटी रेडियो आवाज़ ने जन्म लिया है और इसके अंदर भी कितनी आवाज़ें पोशीदा हैं, उनमें एक प्रोग्राम शेर व नगमा भी है। ज़िंदगी के दो बड़े साथी, हमारा शेर व नगमा हर जुमेरात को दिन के 2 बजे शुरू होता है। मेरा नाम मकबूल अहमद सईद है और मेरे बादशाह आसिफ अली साहब मेरे नगमागर मेरे साथ होंगे। हमारे दरबार के दरवाज़े सब के लिए खुले हैं, ज़रूर इसमें शामिल हों, वक्त किसी का दोस्त नहीं। ये सांसों की जादूगरी न जाने कब थम जाए, वक्त के साथ चलें, वक्त की तज़ीम करें। आखिर में दो शेर, जाती बहार में खिलते फूल के दिल में दर्द था यह खुशबू, जाती बहार में खिलते फूल के दिल में दर्द था यह खुशबू, ये वो हंसता रोगी जाने जिसने ज़ख्म छुपाए हैं। शम्मे बज़्मे तरब बुझ जाए फिर अपने भी पराए हैं, दिन डूबे तो छुप जाते हैं, साए आखिर साए हैं।
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवरटाइज कीजिए आप अपने आवाज़ एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज़ सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज़ रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज़ आवाज़ एफएम के साथ।
2: You're listening to Awaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaz is here. Awaz FM on 99.8.
3: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK. Each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
4: In Britain today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that, an enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel, all of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
5: Radio, the medium that's now large.
6: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046 or you can email info@awazfm.co.uk.
7: After all the hullabaloo, you know you need a break and you want to save money on all your travel in 2026. The solution? Join the Sail Away Travel Club and get great deals and even cash back on cruises, holidays and excursions. And what's more, if you go to this radio station's website, you'll find a discount code that'll give you 25% off your membership fee. The Sail Away Travel Club, where travel is a pleasure, not a load of faff.
8: In chote mote programon se kitna kama lete ho?
9: Jitna bhi kama leta hu, khush hu. Do roti ke saath public ka pyar mil jata hai. Isse zyada aur kya chahiye?
10: Life ko atakna nahi aata. To phir hum aur aap kyun ruke? इस तेजी से दौड़ती जिंदगी का साथ दो, जिंदगी चले बिना रुके।
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवरटाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
2: You're listening to Awaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaz is here. Awaz FM on 99.8.
3: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK. Each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
4: In Britain today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that, an enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel, all of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
5: Radio, the medium that's now large.
6: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046 or you can email info@hoursfm.co.uk.
7: After all the hullabaloo, you know you need a break and you want to save money on all your travel in 2026. The solution? Join the Sailaway Travel Club and get great deals and even cash back on cruises, holidays and excursions. And what's more, if you go to this radio station's website, you'll find a discount code that'll give you 25% off your membership fee. The Sail Away Travel Club, where travel is a pleasure, not a load of faff.
11: Hop on, the Retro Rickshaw is here and is taking you on a ride to the greatest hits of all time. 90s Bollywood bangers by Bombay Vikings and Kumar Sanu. Soulful Kannada melodies, classic Marathi tracks, and the freshest Indian remixes. All in one wild.

0: ये जुल्फें जो रुखसार पे गिरा रखी हैं, ये जुल्फें जो रुखसार पे गिरा रखी हैं, किसी की धड़क ने यूं ही बढ़ा रखी हैं। सुर्ख रुखसार पे वो तिल तौबा, कितनों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। मैकदों में वीरानी सी छा गई है, मैकदों में वीरानी सी छा गई है, यो आपने महफिल की रौनक सजा रखी है। नज़रों के प्यालों से छलकते जामिए, नज़रों के प्यालों से छलकते जामिए, हर सू महकशों की बाढ़ लगा रखी है। हुस्न आपका ये मरमरी बदन जानम, हुस्न आपका ये मरमरी बदन जानम, मुसव्वरी की आपने हर हद ढा रखी है। सितम न कीजिए झुका लीजिए नजरें, सितम न कीजिए झुका लीजिए नजरें, क्या मुझे मदहोश रखने की कसम खा रखी है। शुक्रिया।
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
2: You're listening to Awaaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaaz is here. Awaaz FM on 99.8.
3: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
4: In Britain today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that, an enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel, all of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
5: Radio, the medium that's now large.
6: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046 or you can email info@awaazfm.co.uk.
7: After all the hullabaloo, you know you need a break and you want to save money on all your travel in 2026. The solution? Join the Sail Away Travel Club and get great deals and even cash back on cruises, holidays and excursions. And what's more, if you go to this radio station's website, you'll find a discount code that'll give you 25% off your membership fee. The Sail Away Travel Club, where travel is a pleasure, not a load of faff.
8: Drive on your smart speaker. Drive. Discuss. Debate. Deliver. Driven. Dead.

0: You're listening to Awaaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaaz is here. Awaaz FM on 99.8.
1: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here, and your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज़ एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज़ सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज़ रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज़ आवाज़ एफएम के साथ

0: जी होर सुनाओ सजना की हाल चाल है जी। पूछना पे फटेगा जी आपका क्या कुछ हाल है। उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे खरीद से होंगे। इत्तेफाक से जनाब हमारे आ गए जनाब मोहम्मद अमीन कुरैशी साहब लान
1: जी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब।
2: वालेकुम सलाम
1: जी। जी
2: कैसे हो आप लोग? ठीक है भाई। अजब मैंने आज सुना है गाना
1: जी
2: वापसी का, पता नहीं फिल्म कौन लेकिन तीन किलोमीटर बूंद बूंद कर बोल कोई अल्लाह खैर करे तो गाना ला दियो जनाब राज नाम से।
1: जी जी जी बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया जी। आप सुनते रहिए आपका गाना जरूर आएगा। तो मैं देखता हूँ कि ये गाना जो आपने कहा है कि ये किसके लिए मौजू है। राज राम जी के लिए तो नहीं, मैं अपने नाम कर लेता हूँ। राज राम जी है उनको ये गाना सूट नहीं करता। आपका गाना है तीन कसर पीट पीट कर गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना जी, ये उनको सूट नहीं करेगा। मैं अपने नाम कर लेता हूँ। आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी शुक्रिया। सुनते रहिए ठीक है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। राज राम के लिए कोई अच्छा सा गाना लगाए जी, जो वो तो गाना सुनाते हैं और गला फाड़ फाड़ के थोड़ा बताते हैं किसी को। वो तो इतनी ट्यून अच्छी ट्यून है उनकी कि पूछे मत। पर एनीवे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनका मैसेज सुन रहे होंगे तो पहुंच तो गया होगा उनको मासूम, वो जवाब खुद ही दे देंगे आपको। बहरहाल ये गाना मैं उनकी तरफ नहीं करता, मैं खुद ही ले लेता हूँ आप कर रहे हैं तो। बड़ी मेहरबानी शुक्रिया। सुनते रहिए तो देखिए आगे क्या होता है। ठीक है
2: ओके जी। उनका दिल गार्डन गार्डन होगा, गार्डन में बैठे हुए रेडियो सुन रहे होंगे।
1: अच्छा हाँ आपकी आपस में लाइन जो लगी है मतलब बातचीत कर चुके हैं। चलो ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। ओके थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। थैंक यू समीर। ये थे हमारे काजी मोहम्मद अमीन साहब। कहते हैं जी मुझे गाना सुनना है तो मैं जी अपने ही नाम कर लेता हूँ अक्सर। ये मतलब बेटंगा गाना तो मैं ही गाता हूँ और तो कोई नहीं गाता। पर एनीवे उम्मीद करता हूँ कि सबको पसंद आएगा। आप सुनना चाहते हैं जी फिल्म लव मैरिज से मोहम्मद रफ़ी का ही आवाज़ है और गाना इत्तेफाक से बिल्कुल बराबर आ गया जी। थैंक यू वेरी मच। सुनते हैं जी तीन कलस्टर पीट पीट कर गाना क्या कहते हैं गला फाड़ कर चिल्लाना। ओए होए होए आप सुनते हैं जी रफ़ी साहब की बात।

0: जी टीन कनस्टर पीट पीट कर जी ना गाना गला फाड़ फाड़ के, ऐसी तो कोई बात नहीं थी जी। मैंने जो गाना सुनाया है जी आपका हाल वाल क्या है, और मतलब बड़ा सुरीला था और अक्सर सुरीले ही आवाज़ आते हैं। देखिए राज राम जी क्या कहते हैं जी। नमस्कार राज राम जी।
1: ओ नमस्कार भैया, नमस्कार नमस्कार भैया, ये गला फाड़ने का टाइम नहीं है, ये तो इसमें पानी डालने का टाइम हो गया है अभी तो।
0: गर्मी की वजह से क्या?
1: हाँ और तो गर्मी, इतना गर्मी है तो आपकी गला फट गया है, तो उसको क्या फाड़ फाड़ के गाना गाएंगे।
0: अच्छा अच्छा ये बात है जी।
1: वन वाले को बोल दो भैया
0: जी,
1: यहाँ तो अभी थोड़ा धूप धूप तो बहुत है, लेकिन थोड़ा ठंडा भेज दो दरिया की हवा से।
0: अरे फिर भी अच्छा है, कहते हैं जितनी ज्यादा गर्मी हो सीताराम की गोलियां, मतलब वो क्या कहते हैं पैरासीटामोल की गोलियों से बच जाता आदमी। वेरी वेरी हॉट आफ्टरनून
1: भैया।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक नहीं,
1: काफी गर्मी है, काफी गर्मी है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत गर्मी चाहिए, अच्छा है, थोड़ा ठीक है
0: भाई। आज तो स्टूडियो में पंखा लगा के बैठा हूँ जी मैं।
1: मैंने तो सुबह से मेरा दोनों पंखा चलता है, इधर किचन में चलता है, ऊपर भी बेडरूम में भी सारी रात पंखा चलता रहता है, अभी तो नींद आती है।
0: चलो कोई बात नहीं, इससे ना सेहत अच्छी बनती है। एनीवे एंजॉय योरसेल्फ। आज क्या गुनगुना रहे हैं हमारे लिए?
1: बस हम तो गुनगुनाने वाले देखी है
0: मुकेश
1: है, थोड़ा तो हम बन गए अभी मुकेश।
0: बिल्कुल है जी, है कोई शक ही नहीं है जी जी। फरमाइए।
1: गाना तो है मेरा ख्याल, फिल्म तो अनाड़ी है, मैं भी अनाड़ी अभी तो हो गया ये धूप में।
0: बस पर किसी को बताना नहीं, राज में रखिए। जी
1: बात करें भाई, देखो ये गर्मी है तो थोड़ा बहुत अनाड़ी बनना पड़ता है।
0: अच्छी बात है। एंजॉय योरसेल्फ, प्लीज डू जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आ जाए मैदान में।
1: थैंक यू
0: जी।
1: सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम है अनाड़ी। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम है अनाड़ी। और कुरैशी साहब आप गला फाड़ फाड़ कर हमको ना सुनाओ, सच है दुनिया वालों के हम है अनाड़ी।
0: आपका गाना आ रहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच जी। ये थे जी जमीन राज राम जी, गला फाड़ फाड़ के गाने का भी जवाब दे दिया और गुनगुना के मुकेश की जगह भी ले गए जी, ले गए कोई शाकिर जी। फिल्म मुकेश, फिल्म अनाड़ी में मुकेश साहब की आवाज़ें सुनते हैं जी। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी।

जी सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी सुन रहे थे जी। अभी मुकेश फिल्म अनाड़ी में मैंने गाना लगाया था जी, जो होर सुने हो सुनाओ हाल चाल की है, उसका जवाब मुझे आ गया जी। कहते हैं जी सुनना है जी नहीद अख्तर को फिल्म पकीज़ा में, कुछ उनकी जफाओं ने लूटा ये हमारा हाल है जी, कुछ उनकी क्या इनायत मार गई, सुनते हैं।

जी कुछ उनकी अनायत मार गई जी आप सुन रहे थे। उम्मीद करता हूँ आपको जोड़िए गाना पसंद आएगा। जवाब से जवाब मिलता है जी हमारे की गोद में का गाना अगला सुनाते हैं आपको जी। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिली तो क्या हो?

जी फिल्म हमारी के गोद में सुन रहे थे जी आप लता मंगेशकर को जी। अशोक पटेल साहब आप याद कर रहे हैं जी हमें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। आपकी फरमाइशें मेरे पास भाई बहुत आ चुकी हैं और आपने भी अभी दो तीन फरमाइशें और भी कर दी हैं और मुझे थोड़ा सा वक्त ज़रूर दिया करें ना, मेरी मेहरबानी है। आपकी फरमाइश जो आई थी दावत इश्क जी वो पेश करता हूँ जावेद अली और सुनिधि चौहान की आवाज़ में, फिल्म का नाम भी यही है।

जी आप सुनाते हैं जी, आप आपको एक गाना ऐसा, पेंग गस्ते जी, माना जनाब ने पुकारा नहीं, किशोर कुमार।

देते हैं हसीनों को सलामी। गुस्सा न कीजिए, जाने भी दीजिए, बंदगी तो लीजिए साहब।

माशा अल्लाह कहना तो माना, बन गया बिगड़ा जमाना, माशा अल्लाह कहना तो माना।

0: प्रतिक्रिया तो कीजिए साहब। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुक्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है। वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा
1: जी, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। ये अगला गाना जो आ रहा है जी, उसका भी जवाब नहीं। कहते जी कव्वा चला हंस की चाल, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है जी। अराउंड द वर्ल्ड फिल्म का नाम है और पसंद करने वाले हैं कुरैशी साहब आप सब के लिए।

कुरैशी साहब कौवे खा गए हमको, बचाइए, ऐसा तो गाना ना भेजिए कि सारे डर जाएं। बड़ा जी बड़ा अच्छा जो चॉइस थी आपकी, अगली चॉइस है जनाब राजनाम जी, आपकी सुनते हैं फिल्म शबाब से, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है जी, क्लासिकल गाना जी, मन की बीन मतवारी बाजे।

तेरी आंख का इशारा ना होता। पटेल भाई, वो राज राम जी ने फ़ोन किया, कहते हैं जी ये गाना तो मुझे भी बड़ा पसंद है, लिहाजा मैं अपना ही नाम कर लेता हूँ। तो ज़रूर मैं सबके लिए गाना है जी, इसमें कोई शक नहीं, आपकी चॉइस बड़ी अच्छी है जी, उन्होंने बड़ा सराहा आपको। तो अभी तक अमीन साहब ने फ़ोन नहीं किया कि उनको कैसा लगा गाना, पर आप सबको राज राम की तरफ से एक और गाना सुनाते हैं, जो कहते हैं जी हाउस, फिल्म का नाम है जी हाउस नंबर 44, लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाज़ में, पीछे पीछे आकर।

जी आप सुन रहे थे जी हेमंत कुमार को फिल्म जाल में सुनला दिन की दास्तान। जी ये शुक्र अदा करता हूँ यास्मीन बानो जी, आपने काफ़ी इंतज़ार किया और इत्तेफाक से आपने जी यके बाद दीगरे एक दो फरमाइश की हैं गानों की, और आप जानती हैं कि साईं है बड़ा ढीला और आहिस्ता गाने ढूंढता है, और मुझे उम्मीद भी नहीं कि ये वही गाना कोई या गाने मैं तलाश कर चुका हूँ जो आपने ही चाहे थे। पर एनीवे कोशिश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर पसंद आएगा। ये अगला गाना जो आप ही के अनुमान पे आ रहा है जी, आपने कहा जी मेरे जीवन साथी गाना सुनाए, तो लीजिए ये हाज़िर है। उम्मीद करता हूँ कि वही होगा जो आप चाहती हैं।

जी मेरे जीवन साथी यास्मीन बानो जी, ये आपका गाना था, फिल्म भी यही थी और गालिबन उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ थी आपने जो सुना। अगला जो गाना आ रहा है जी, ये भेज रहे हैं आप सबके लिए कुरैशी साहब, कहते हैं जी फूल भेज रहा हूँ। कुरैशी साहब, जो आपने आवाज़ मांगी मुकेश की, इत्तेफाक से मुझे नहीं मिल सकी, अलबत्ता लता मेस्त्री की आवाज़ में पेश करता हूँ आपके लिए। उम्मीद करता हूँ कि सबको पसंद आएगा। फिल्म है सर्वास्ती चंद्रा, लता मंगेशकर की आवाज़ है।

लो कुरैशी साहब, दोनों की आवाज़ हो गई, ये दोनों का ही गाया हुआ गाना है, मुकेश और लता मंगेशकर जी। उम्मीद करता हूँ कि आपका वही गाना जो आप चाहते थे वही सुना दिया आपको। अब सुनाते हैं जी अगला गाना, पटेल साहब आपकी ये फरमाइश है तो आप सुनना चाहते हैं जी फिल्म सूरत और सीरत से ये गाना, मुकेश जी की आवाज़ है। और बोल को चाहते हैं जी, बहुत दिया देने वाले ने तुझको आंचल ही ना क्या कहते हैं समाए, तो क्या किया जाए।

लो जी, राज राम जी, असल में एक रशी साहब ने किया है फ़ोन, तो कहते हैं जो पिछला गाना मैंने सुनाया आपको मुकेश और लता मंगेशकर का, वो क्या था जी, फूल तुझे भेजा ख़त में, ये असल में आपके लिए भेजा था जी उन्होंने, मैं कहना भूल गया हूँ, इसकी मैं माजर चाहता हूँ जी। उन्होंने स्पेशल कहा, कहते हैं गर्मी बहुत है साईं, तुम्हें अब याद नहीं रहती कि तुम्हें कहना क्या चाहिए। लो जी, कह दिया आपकी तरफ से, वाकई सही बात है, गर्मी बहुत है, साईं का इतना दिमाग भी नहीं है, क्या करूँ, बस गुजारा कर रहा हूँ जी। बड़ी मेहरबानी, आपको शुक्रिया, और आपने याद करवाई है जी, मैंने बता दिया है, राज राम जी एक्सेप्ट कर लेंगे आपकी तरफ से ये गाना। और आपने पटेल साहब जो गाना आप सुनाया है, इसका जवाब भी आप दे रहे हैं आपको राज राम जी ही अपने ही एक गाने से, कहते हैं कि थोड़ा सा कुछ ऐसी बात है कि रात भर का मेहमान है जी अंधेरा, तो घबराइएगा ना, सब कुछ ठीक होने वाला है। ये फिल्म है जी सोने की चिड़िया, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी।

जी यास्मीन बानो फरजाना जी आपकी तरफ में आता हूँ, आपकी फरमाइश मेरे पास रहती है जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको भी पसंद आएगी, क्योंकि वही होगी जो आप चाहती हैं ना। आपका कुछ अनवार कुछ ऐसा था तो गाना कुछ पहले लग गया, बोलने से पहले ही दीवाना क्या दीवाने हम हैं नहीं हैं दीवानी रातें हैं, कुछ ऐसी बात है। सुनते हैं स्टेवन बेन की आवाज़।

जी थैंक यू यास्मीन बानो जी, आप भी कहती हैं जी गाना रॉन्ग लग गया है। अच्छा, कभी कभी ऐसे होता है जी। देखिए जी, आपको रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा सा वक्त पे भेजा करें गाने, ताकि मुझे भी ज़रा जल्दी हो जाए, आसानी हो जाए तलाश करने में। और यहाँ पर हमारे स्टूडियो में इतना ख़जाना नहीं है जो हर किस्म का गाना फौरन मिल जाए, पर एनीवे मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि आपका दोबारा वही शायद मिल जाए गाना तो देते हैं। वैसे दिल दीवाना दिल न जाने ये क्यों धड़कता है वगैरह वगैरह, ये धड़कता रहता है जी। नहीद अख्तर की आवाज़ फिल्म नन्ना फरिश्ता से आप सबके लिए हाजिर है।

0: You're listening to Awaaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaaz is here. Awaaz FM on 99.8.
1: Sameer, aap sun rahe hain Radio Awaaz FM Southampton. Welcome after the break. Ji, agla jo item gana aa raha hai, ji, wo film Mahmood ki, Mehboob ki Mehndi se hai. लता मंगेशकर की आवाज़ में है और जस्ट फॉर यू रोशनी बेगम, जाने क्यों लोग मोहब्बत करते हैं।

तो हाँ जी, मोहब्बत तो करनी ही पड़ती है, क्यों करते हैं देखते हैं जी। मोहम्मद रफ़ी साहब फिल्म बेटी में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हसीन जुल्फों का रंग है ना जी, क्या कहें, वही दे दो।

समीन पटेल साहब, ये आपकी फरमाइशी जो आप सुन रहे थे जी, अगली फरमाइश आ रही है जनाब फिर काजी मोहम्मद अमीन साहब, आप कहते हैं जी मत्थे उत्ते टिक्का ते गल विच गाणी अनवर रफी की आवाज़ ते फिर सुन रहे हो जी कोडे शाह।

जी लौंग का खेड़ा तो छोड़ना ही पड़ेगा जी। मैं आगे चलता हूँ जी प्रोग्राम को लेकर जी, अगला गाना सुनाता हूँ जी आपको। आप हैं जी यास्मीन बानो जी, आप देखिए, उम्मीद करता हूँ कि ये गाना आपकी चॉइस का ही है। दीवानी मैं दीवानी।

समीर आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ एफएम साउथहैम्पटन। गाना सुना आपने दीवानी में दीवानी, साजन की दीवानी, फिल्म मेरे जीवन साथी, जिसमें अभिजीत भट्टाचार्य और साधना सरगम ने गाया। अभी सुनते हैं मेहदी हसन की ये आवाज़, बोल कुछ ऐसे हैं, जिसने मेरे दिल को दर्द दिया, फिल्म ससुराल।

समय आप सुन रहे थे मेहदी हसन को फिल्म ससुराल में, जिसने मेरे दिल को दर्द दिया। आप सुनते हैं फरदोसी बेगम की आवाज़, फिल्म तलाश है, कहती है मौसम रंगीला नशीली हवा।

मौसम रंगीला नशीली हवा फिल्म तलाश में आप फरदौसी बेगम को सुन रहे थे। आइए आप सुनते हैं सामने आके तुझको पुकारा नहीं तेरी रिसवाई हमको गवारा नहीं। ये मेहदी हसन की आवाज है जी, फिल्म दर्द।

0: Cobbett Road Library is now open to the public. The library is the perfect place for a quiet read, family activities, children's day out, borrowing your favourite book to take home, or simply to search online for jobs. Visit the brand new library at Cobbett Road, Bitton Park, Southampton. On FM 99.8, DAB, on your smart speaker, and online around the world. Hours FM News.
1: On 99.8 FM and online around the world, and on digital DAB radio across South Hampshire, this is Southampton's Awaz FM News.
2: Inspire FM ki Urdu News ke saath, main hoon Mukarram Abbas. सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर सर केर स्टार्मर का कहना है कि मैं कहीं नहीं जा रहा, लोगों को उम्मीद दिलाने की ज़रूरत है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर इस हफ्ते भारत दारुलहुकूमत नई दिल्ली पहुंचेंगे। अमेरिकी प्रेसिडेंट बुध की शाम चीन पहुंचेंगे, जहां वो चीन के प्रेसिडेंट से ईरान जंग समेत अहम अमूर पर बातचीत करेंगे। पुर्तगाल और इटली ने यूरोपीय यूनियन के मुतनाज़ा सरहदी चेकिंग के निज़ाम को मुअत्तल करने से इनकार कर दिया, और बरतानिया में फ्रांस के रास्ते छोटी कश्तियों पर गैर कानूनी तौर पर पहुंचने वाले अफराद की तादाद इस साल तकरीबन 2 लाख तक पहुंचने का इंकशाफ हुआ है। और अब इन खबरों की तफसील। अमरीकी प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस हफ्ते वेडनेसडे की शाम चीन पहुँचेंगे, जहाँ वह चीन के प्रेजिडेंट शी जिनपिंग से ईरान जंग, तजारत और आलमी सिक्योरिटी समेत अहम मामलों पर बातचीत करेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाज़ाब्ता मुलाकात थर्सडे को होगी, जबकि दौरा फ्राइडे को ख़त्म होगा। अमरीका ने भी इस साल के आखिर में चीन के प्रेजिडेंट शी जिनपिंग को जवाबी दौरे की दावत दी है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक प्रेजिडेंट ट्रंप चीन पर ईरान से तेल खरीदने और तेहरान को इस्तेमाल की अशिया फराहम करने के मामले पर दबाव डाल सकते हैं। वाज़ह रही है कि ईरान ने अमेरिका और इसराइल के हमलों के रद्दे अमल में आबनाए हरमुज बंद कर दी थी, जिससे आलमी तवानाई तरसील मुतासर हुई और एशियाई मईशतों पर दबाव बढ़ा। चीन ने ईरान जंग के खात्मे की ख्वाहिश जाहिर की है और गुज़श्ता हफ्ते ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की मेज़बानी भी की थी। बीजिंग ने ईरान की तेल पर अमरीकी पाबंदियों को यक तरफा करार देते हुए उन्हें तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। बरतानिया में फ्रांस के रास्ते छोटी कश्तियों पर गैर कानूनी तौर पर पहुंचने वाले अफराद की तादाद रवा साल तकरीबन 2 लाख तक पहुंचने का इंकशाफ हुआ है, जिसके बायस हुकूमत पर दबाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरहदी इलाकों में फ्रांसीसी पुलिस की बाहरी नफरी तायुनात होने के बावजूद इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस ग्रोह सरगर्म है और गैर कानूनी सफर रुक नहीं सका। दूसरी जनरल फ्रांस का कहना है कि गैर कानूनी नकल व हरकत रोकने के लिए समंदरी हदूद में कार्रवाइयाँ तेज की गई हैं, जबकि बड़ी तादाद में अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर सर केर स्टार्मर का कहना है कि मैं कहीं नहीं जा रहा, लोगों को उम्मीद दिलाने की ज़रूरत है। हालिया इलेक्शन और लीडरशिप चैलेंज से मुतलिक खिताब करते हुए केर स्टार्मर ने कहा है कि इलेक्शन के नतज इंतहाई मुश्किल थे, जिसकी ज़िम्मेदारी कबूल करता हूँ। उन्होंने कहा कि ज़िम्मेदारी कबूल करता हूँ, अब तब्दीली लाना भी मेरी ज़िम्मेदारी है। हमें ख़तरनाक मुखालिफिन का सामना है, अगर हमने दुरुस्त रास्ता मुंतखब न किया तो मुल्क तारीख राह पर गामजन हो जाएगा। केर स्टार्मर ने मज़ीद कहा कि लोग बरतानिया के हालात से मायूस हैं, कुछ लोग मुझसे भी नाराज़ हैं। ब्रिटिश स्टील को नेशनलाइज करने के लिए कानून साजी इस हफ्ते किंग की तकरीर का हिस्सा होगी। ब्रेग्जिट ने बरतानिया को कमज़ोर किया। पुर्तगाल और इटली ने यूरोपीय यूनियन के मुतनाज़ा सरहदी चेकिंग के निज़ाम को मुअत्तल करने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद गर्मियों की छुट्टियों के लिए बैरूनी मुल्क सफ़र करने वाले मुसाफरों और गैर मुल्की सियाहों में बड़ी बेचैनी पाई जा रही है। बरतानवी बाशिंदे दोनों मुल्कों से इनकार के बाद एयरपोर्ट्स पर घंटों तवील कतारों में खड़े होने पर मजबूर हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास सिराग़ची के इस हफ्ते भारत की दारुलहुकूमत नई दिल्ली पहुंचने का इम्कान है, जहां वो 14 मई को ब्रिक्स वज़रा खारजा इजलास में शिरकत करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इजलास सितंबर में नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स सरबराही इजलास की तैयारियों के सिलसिले में मुनक़द किया जा रहा है। امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اس ہفتے وینسڈے کی شام چین پہنچیں گے، جہاں وہ چین کے پریزیڈنٹ شی جن پنگ سے ایران جنگ، تجارت و عالمی سیکیورٹی سمیت اہم معاملات پر بات چیت کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان باضابطہ ملاقات تھرسڈے کو ہوگی، جبکہ دورہ فرائیڈے کو ختم ہوگا۔ امریکہ نے بھی اس سال کے آخر میں چین کے پریزیڈنٹ شی جن پنگ کو
1: On 99.8 FM and online around the world and on digital DAB radio across South Hampshire, this is Southampton's Awaz FM News.
2: Inspire FM ki Urdu News ke saath hoga. America ne bhi is saal ke aakhir mein Cheen ke President Xi Jinping ko jawabi dore ki daawat di hai. Amerikee hukam ke mutabik President Trump Cheen par Iran se tel khareedne اور تہران کو استعمال کی اشیاء فراہم کرنے کے معاملے پر دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ واضح رہی کہ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے رد عمل میں آبنائے ہرمز بند کر دی تھی، جس سے عالمی توانائی ترسیل متاثر ہوئی اور ایشیائی معیشتوں پر دباؤ بڑھا۔ چین نے ایران جنگ کے خاتمے کی خواہش ظاہر کی ہے اور گزشتہ ہفتے ایران کے فورن منسٹر کی میزبانی بھی کی تھی۔ بیجنگ نے ایران کی تیل پر امریکی پابندیوں کو یک طرفہ قرار دیتے ہوئے انہیں تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ سامعین، یہ تھیں اس وقت تک کی اپ ڈیٹس۔ مزید اپ ڈیٹس کے لیے سنتے رہیے
3: Would you like to take up Tai Chi? Tai Chi classes are available at Cobbett Road Hub and Library with Charlie, and you can park on Cobbett Road or nearby at Bitton Station. For more information, contact Cobbett Road Hub and Library.
0: 99.8 FM and online around the world and on digital DAB radio in South Hampshire. That was Southampton's Hours FM News.

0: चलते हैं पाकिस्तान, लाइन पर हैं अजमल शोभी।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम।
1: आपको वेलकम कहता हूं मैं कराची पाकिस्तान में।
0: हाँ जी शुक्रिया।
1: मैं सामीन को सबसे पहले तो है कि आवाज एफएम टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा मैं कि उन्होंने अपनी काबिश को जो है वो एक इस तरह आगे पहुंचाया है कि एक लिसनर को एक ऐसा चैनल मिल गया सुनने के लिए कि जहां पर वो अपनी पसंद का खूबसूरत सब म्यूजिक भी सुन सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी सुन सकते हैं और बहुत सारी मालूम उन्हें फ्राहम होंगी आवाज से। और उसके साथ साथ जो है तमाम लिसनर्स को जो इस वक्त मुझे यूके में सुन रहे हैं, तमाम लिसनर्स से को मैं मुबारकबाद दूंगा आवाज एफएम की जानिब से। मेहरबानी तो आवाज एफएम में इतने खूबसूरत लोग यहाँ मौजूद है और मैं मुसलसल ट्रांसमिशन को सुन रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहा हूँ आप सबके साथ, बहुत खूबसूरत म्यूजिक भी मिल रहा है, इंफॉर्मेशन भी मिल रही है और पाकिस्तान से भी प्रोग्राम हो रहे हैं, यूके से प्रोग्राम हो रहे हैं, तो बड़ा ऐसे अजीब बड़ा खूबसूरत है, मिला जुला सा माहौल होता है। जब कहते हैं ना कि बड़े हसीन खूबसूरत फूलों को हम यज्जा करते हैं तो एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा प्यारा अट्रैक्टिव जो है गुलदस्ता बन जाता है, और ओके बनता है।
0: और अजमल साहब इधर भी अपना ये जो रिसेंट ईयर्स जो गुजरे हैं ना, इनमें पाकिस्तानी और इंडियन हमारी जो अपनी कम्युनिटी है एशियन, ये काफी ज्यादा बढ़ गई है और इस चीज की जरूरत थी कि जो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म इधर मिलना चाहिए जिसमें हमारे अपनी कम्युनिटी की पहचान हो, हमारी बात हो, और उसके लिए ये बहुत अच्छा कदम जो है ये उठाया है।
1: बिल्कुल बहुत अच्छा कदम है और इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ आवाज एफएम की टीम को।
0: थैंक यू वेरी मच।
1: बस थैंक यू वेरी मच और मैं बस तमाम लिसनर्स को कहूंगा कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें और एंजॉय करें और उम्मीद करता हूं कि भी हमारे आगे डीजे से प्रोग्राम करेंगे यहां पर, उन सब के साथ खूब एंजॉय कीजिएगा और बिल्कुल ये आपका अपना एक फैमिली चैनल होगा इंशाल्लाह ताला और बिल्कुल आप आवाज एफएम को अपने एक फैमिली चैनल की तरह पाएंगे, इनके तमाम आरजेस को आप अपने एक फैमिली मेंबर्स की तरह पाएंगे, बस क्योंकि मिलने जुलने से मोहब्बत बढ़ती है और जब मोहब्बत बढ़ती है तो कहते हैं दूरियां खत्म हो जाती हैं, तो बस इसी दूरी के साथ इसी मोहब्बत के पैगाम के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिंदगी बखैर।
0: थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय,
1: आई लव यू ऑल।
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
3: You're listening to Awaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaz is here. Awaz FM on 99.8.
4: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK. Each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us you round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more.

0: Roy America.
1: Do you have time for a pleasant experience?
0: Chalo, chalo, Roy America.
2: ओ ताऊ राम राम, ओ बंद कर, ए बोला ना ये बंद कर। हाँ, गुड इवनिंग फोक्स। मायसेल्फ भाई साहब त्यागी फ्रॉम मेरठ। नाउ आई विल रॉक विथ माय देसी लठ। रमारे बैंड का इंट्रोडक्शन भी सुन ले। जय आनंद प्रकाश, जय बजाया करे ढोल, और जय किशन लाल बिच्छू, जय बड़ी चीज बजाया करे भाई, और बाकी है गा चोरस, जय रबड़ी इमरती, नाम ना बता, ये पप्पू की अम्मा है। और चलो रे शुरू हो जाओ, इब मैं सुनाता हूँ अमेरिका का हिप हॉप। और जय माता दी,
3: लेट्स रॉक।

0: साउथैम्पटन एक खूबसूरत तारीखी शहर, समंदर की नीली लहरों के किनारे ये आबाद शहर अपने अंदर कितने राज छुपाए हुए हैं। मेरी जवानी का शहर जिसकी गोद में मैंने कितने सुनहरे दिन गुजारे हैं, मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। इसी शहर के दिल के अंदर हमारा एक कम्युनिटी रेडियो आवाज़ ने जन्म लिया है और इसके अंदर भी कितनी आवाज़ें पोशीदा हैं, उनमें एक प्रोग्राम शेर व नगमा भी है। ज़िंदगी के दो बड़े साथी हमारा शेर व नगमा हर जुमेरात को दिन के 2 बजे शुरू होता है। मेरा नाम मकबूल अहमद सईद है और मेरे बादशाह आसिफ अली साहब मेरे नगमागर मेरे साथ होंगे। हमारे दरबार के दरवाज़े सब के लिए खुले हैं, ज़रूर इसमें शामिल हों, वक्त किसी का दोस्त नहीं। ये सांसों की जादूगरी न जाने कब थम जाए, वक्त के साथ चलें, वक्त की तज़ीम करें। आखिर में 2 शेर, जाती बहार में खिलते फूल के दिल में दर्द था यह खुशबू, जाती बहार में खिलते फूल के दिल में दर्द था यह खुशबू, ये वो हंसता रोगी जाने जिसने ज़ख्म छुपाए हैं। शम्मे बज़्मे तरब बुझ जाए फिर अपने भी पराए हैं, दिन डूबे तो छुप जाते हैं, साए आखिर साए।
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवरटाइज कीजिए आप अपने आवाज़ FM पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज़ सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज़ रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज़ आवाज़ FM के साथ।
2: You're listening to Awaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaz is here. Awaz FM on 99.8.
3: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
4: In Britain today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that, an enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel, all of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
5: Radio, the medium that's now large.
6: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046 or you can email info@hoursfm.co.uk.
7: After all the hullabaloo, you know you need a break and you want to save money on all your travel in 2026. The solution? Join the Sail Away Travel Club and get great deals and even cash back on cruises, holidays and excursions. And what's more, if you go to this radio station's website, you'll find a discount code that'll give you 25% off your membership fee. The Sail Away Travel Club, where travel is a pleasure, not a load of faff.
8: In the meantime, we need Simon's assistant to put the sliders down to shut me up. So I'm going to...

0: आशिक हो दीवाना हो।
1: साउथैम्पटन एक खूबसूरत तारीखी शहर, समंदर की नीली लहरों के किनारे ये आबाद शहर अपने अंदर कितने राज छुपाए हुए हैं। मेरी जवानी का शहर जिसकी गोद में मैंने कितने सुनहरे दिन गुजारे हैं, मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। इसी शहर के दिल के अंदर हमारा एक कम्युनिटी रेडियो आवाज़ ने जन्म लिया है और इसके अंदर भी कितनी आवाज़ें पोशीदा हैं, उनमें एक प्रोग्राम शेर व नगमा भी है। ज़िंदगी के दो बड़े साथी हमारा शेर व नगमा हर जुमेरात को दिन के 2 बजे शुरू होता है। मेरा नाम कबूल अहमद सईद है और मेरे बादशाह आसिफ अली साहब मेरे नगमागर मेरे साथ होंगे। हमारे दरबार के दरवाज़े सब के लिए खुले हैं, ज़रूर उसमें शामिल हों, वक्त किसी का दोस्त नहीं। ये सांसों की जादूगरी न जाने कब थम जाए, वक्त के साथ चलें, वक्त की तज़ीम करें। आखिर में 2 शेर, जाती बहार में खिलते फूल के दिल में दर था यह खुशबू, जाती बहार में खिलते फूल के दिल में दर था यह खुशबू, ये वो हंसता रोगी जाने जिसने ज़ख्म छुपाए हैं। शम्मे बज़्मे तरब बुझ जाए फिर अपने भी पराए हैं, दिन डूबे तो छुप जाते हैं, साए आखिर साए हैं।
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवरटाइज कीजिए। आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
3: You're listening to Awaz FM's new service on 99.8 megahertz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaz is here. Awaz FM on 99.8.
4: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
5: In Britain today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that, an enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel, all of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
6: Radio, the medium that's now large.
7: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046 or you can email info@hoursfm.co.uk.
8: After all the hullabaloo, you know you need a break and you want to save money on all your travel in 2026. The solution? Join the Sail Away Travel Club and get great deals and even cashback on cruises, holidays and excursions. And what's more, if you go to this radio station's website, you'll find a discount code that'll give you 25% off your membership fee. The Sail Away Travel Club, where travel is a pleasure, not a load of faff.
9: We even left a bit of paper. It's that taskmaster Ali, the station manager, cracking the whip, saying it can't just be you two talking nonsense all week.
10: That's right, yeah.
9: You need to get someone else to talk nonsense with you.
10: With us.

0: I know. How do we get Finnish listeners?
1: I don't know.
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
3: You're listening to Awaz FM's new service on 99.8 megahertz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB, and on the internet. The new Awaz is here. Awaz FM on 99.8.
4: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. When you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue.

0: पता तुम कौन हो, कहां से आए हो, मुझे बस तुम्हें जिंदा रखना है खुदा के लिए, चाहे दुश्मन हो या कोई अजनबी, है दुआ मेरी रब से, नहीं चाहती कि घर किसी और का मेरी तरह उजड़े।
1: कभी ये भी ज़माने हैं।